धन तो बिडावी अरे ए ना ओकना तो ना तुवे दोरनी ने नाती बतियो एम बली दी अनियत आओ उनु धई ही दाबदायनो इन निसरेका तवामेनो तवायनो इन सिरेका एकन अरे कातीने अरे तकातीने इमबरे रशद बरा रशद आको रशद एकन दाए ब्रंशीदो दाई थाती इतरशिदना अमाग रशीदो अमाग थाती इतरशिदना तो न तो दाई थिनन ने सरी ओकना बे तुनाती दाई इन निसरेका तेन ते दाई सोयाना तेन ते दाई रहसाना दिया ओकना नेत आओ ऊतक का गिंदिया थबैती तो दूरारे हुआ ओरिया हुआ वह बिन तेरा बंदे इंदी तो दूरारे तवास्ते नी आती सो कीना वह बिन रिस्ते नी आया इन बरे कस्से दायब ती सो कीना तो दूरारे भी बरी एक तोले हाफी बिथायक ओरिया भी कोनायक इंदोर ऊ सिमाए कुड़ीनी तोले रिस्ते नी आया ना अरे ले तवाया ना फगरा फगरा बके ना दाई था आती दाया ना इ दाई ओ धई वविन कायक ना हमोसाना इधर दिस कायक ना रिशिदना उत्थाय आती यर सोतनियो ओ सो दाई उन उस उम्बरु उगनी इब्दायती लेत लेत बितकाय देविनो हैया केती है सकेन बेतुनाती दा हेनिन दाई ने यर निसरिव यार अरेना अरित अरितेना बराक नहन धायो नानो अको बेतुनाती दा दाई ने निसरिव ओकना दाई ने तवाया ना यार एक तेन ती दाई उस दिक कतियक सोया ना हमोइसा कतियक सोया ना थदारित कतियक सोया ना उस दिक कतियक सोया ना अरे यार एक ना बा मागना गले करा वे ददीना गले करो इत्तिकेक ना ओरे रुआ ते तेन बते ते दाई इत्तिकेक ना तवाया ना दीति सोतनी आया तो और तिकतियक उसानो खमोइसी तिंदी आया और कतियक तुकातो दाए बगुनो कोई दिया तिंदी आया उम्बतु कस्तु यार ही दद्दे तवाई ही द दाई इम्बते कस्ते सकेने यार अकना लही तेरा शिद नौकना असे है सकेनो तो बुढ़ावी उधायुन इन्हें इन दाई ने निसरी वोकना तू न तो दाई दी म दाई ते कतियो बेन ओदोर तिशबोबी तुशाबु बुआ आन थदरे हुआ आन फगरंदी हुआ ओरिया हुआ तित्ताने इम्बता यारे तवाई इन यार उबोई सकेनो लहित लहित बितकाय यार गरोयो इराशिद ना बरेयोक न दाय ना दायन वरी ने दा ना दायन बेत तुनाती दाय इन्हें इन असासक धैयो नेहरिव असासक उन नेहरुए उन उधै असासक दाय दाय थाय आती दाय ने तो न नेहरिव इन यारान व इन सिरकायान इन बरा रशदो नु रशद दाय तवानेक शुभोबी ऊतक सूर्य दबाब कक दियाव फेराय दो बनु इकतीहन रे उबार शाद तवामीन मल्हे तरमो मनु इकतीहन ना तवा कान हत आये दियाव मल्हे उत मल्हे सो किन्न तरमोमा हुआ मल्ही हुआ इंदरे सो किन्न रशद उकन गार रे वं के आके इन सिरेका हुआ यार आकन रशद बे तुनाती दा हेनेन इन यारान दाएब दाईने थरेनी दाई थाय आती दाएने का लहित लहित बितकाय हेनेन हैने माडेट अमसे बारूक उकना उक तिकते ना आन उन नसरे का दिशबोवी ने भवाते कतेक भवा बहवी ना भवा उकना भवासा तेदने यारे बर हर दीते हवा हवा न दीना थवा उदाई भवासा ना भवा बहवी ना अरे उकना बागुस्सा ना भवा उकना तो नंब तो दाए बे दिशबोव तेदने निजाम दई तीन हमसे ना निजाम तिंदिये और मर्दोर फितेराया मर्दोर महसाया मर्दोर देरा रात इंदी आया तुम अरे तोकन तुद आयत रिसेतित का तोन आया तुम बतो तोन अमसे आया दीतित तोकन अमसे तिनी हुए तुम्हारे लही तुए तिनी हुआया तू न नाना तु तिंदी ओकन तुबनिया तु बारी तु उन उबाशर हुआ अदे हुआ दाई अक्ति अकें काबज वे तो ना तीदा इत्था तिद आयत हिनिन निसरी ओकना उन दाब इन हिनिन गाना उन्ने तु तुबड़ावे ती उगनो ही पी दीने ते है नाना तो तिंदी ओन उन्हें सिरिक अना और बर्रा भवाया हल्लान हल्लान का एन बक दिफा और दिफा दी तित का बर्रा का सुके फरा दी मा सुके कित फेरा ओदोर हवा अरवाब कतिये हवा स्तिनिये हवा अरे अरवाब भी काये दोर दिवा तिंदी आया जमन एनो राहाते कहा तिंदी आया अरे अना और दिफात मल्ला मर दोर आ तिंदी आया हवा ओकना यार इदाई हुआ दाई हवा हुआ उम्बरोर हस्तिनिये थवा स्तिनिया आया सो और उन धायून दमन बेन आई
maashallaah imandaraa hinawo un wawli ihiino been odor daayitaa aatiib ihiin dhahase hinin dhahoynihay udamaan usuure bakaad irib uda imindar eyaanay tumadiina eyaano taya tusuure dhakaatterib bettunaatiida nazamteene toona zamanekinawo wawaawwa teerawo imbare nizaam daytid ine toona umbatu arriwookna tadriise katiyek allamteni aya teena tidaayid tisookiin aya teena tidaayid resteni aya henin kastuutuni sariweetukna daayib badaayin daayit hayaatib badaayin niyaadib imbalib niyadookna bettunaatiiday shiboobna yariyokna day shiboobna yarek ikna nakumanaayaana nisirik ukna unakumana henin nisariwi naagwadiibu tednek nisirik ukna un uudhay orey fira sigiya baksaka eedn oor ukna hirere inu bak uguruma shiishtiniyayt ana ooru umbaruk daaywaatindiya idaayiftindiyaaya are uknaayuk inakumanaaye kasiistiniyaaya naanaatutindiyek malla udhayida nakumanaayine kaabu udhayida ishiboobe kaabu udhayida masiguwa daayinawa tawaayine kaabu henin bettunaatiida in yar imbalibtudayneyade yaramba ishiboobnaa ba iirshid nahoon lahit ba itfeyek nahoon daayit haatib ba daayin uud hareerheeno maashallah uor naa abunaanaay oor keeke maashallah daay ooru daayit tarbiyaa irabbiyaaba daay soysooyaaba ba iyaadna miyaadib henin imbalibniyadokna bettunaatiiday shiboobnaa ugaroyokna day shiboobnaa yareyokna day shiboobnaa udayida shiboobnaa ushawiida shiboobnaa imbate kaste heninni sariweetokna naato ako uttunaatiiday udhayuun tubidhawi iheeni miinika daayib daayineed areeni bettunaatiida shalla daayib daateena shalla daayit hay aatib daateena eene nistirahoknane